0: परम आदर योग।
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर्स अ डे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
0: परम आदर योग।

हजूर कलगीधर पातशाह तुसा बड़ी मेहर की थी। खालसा पंथ सजाया कौन सी

नैण महिंदे तरस गए कद तस्सी जी दार। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का कामन शहीदी दिन जो आप जी पंचम पातशाह जी की पावन याद में जुड़े हो। प्रसिद्ध कवि करम सिंह जी बालम जी उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, जामे शहादत पीते है शहीद समझते पैमाना है। खुश रहते कतल गामे कहते जे मखाना है। खुश होते देख कर जलाद की शमशीर को, बदल देते बालम वतन दी तकदीर को। शहीदां दी जिहड़ी मौत है, जो शहीद है वह कौम वास्ते कुरबान हुंदे हन। शहादत के हर कतरा खून में छुपा इमा होता है। जुल्म जिसमें डूबे हुए सलाबे तूफान होता है। शहीदों की कतलगाह में कब बेहतर है काबा, तो खुदा भी शहीद खाक पे कुर्बान होता है। एक विद्वान ने बड़ा पंजाबी दे शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी सबर दी दसी ए जंग तेनू। मस्ती लत्थी ना अजे मस्तानिया होए दिता समय ने सूली ते टंग तेनू। ज्यो ज्यो सड़े तू भट्ठिया विच पै के तेनू तो चढ़े परवानिया रंग तेनू। कहिंदे परवानिया तेनू दुखां ते नागां दा खौफ की है, तेरे कोल है नाम दी कणी सिखा। शांत रख दी जेड़ी अंगारियां ते, तेरे कोल सुखमणी दी मणि सिखा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का पावन पाठ सुखमणी साहब। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने शहादत दिती है। धन गुरु पंचम पातशाह जी ने अगन वल अग वल कोई ध्यान नहीं किया। अग बलदी है बलदी रहे कोई गल नहीं है, पर सतगुरु पातशाह जी ने नाम दे नाल ध्यान जोड़िया है। नाम की ठंडक नाम की शीतलता धन गुरु पातशाह जी ने प्राप्त की है। इतिहासों में जिक्र आता है कि जदों प्रहलाद नूं ये सजा दी गई कि जे तेरा खुदा रब तेरा सच्चा है तो तत्ते थम देने लग जा, तो प्रहलाद ने देखा जदों बहुत तपदा थम है तो बेनती की अरजोई की, हे अकाल पुरख प्रभु परमेश्वर जी कृपा करो मेरी रक्षा करो। तो प्रहलाद ने देखते देखते कीड़ी का रूप धारण करके प्रभु परमेश्वर तत्ते थम ते आ गया। तो प्रहलाद की फरियाद सुन ली, प्रहलाद की बेनती सुन ली अकाल पुरख परमेश्वर ने। यह इतिहासों में जिक्र आता है जे इब्राहिम पैगंबर नमरूद बादशाह ने आख्या कि जे तेरा रब खुदावंद सच्चा है तो तू तपते अंग्यार वंग भखते गो कोले थले विछा दते धरती दे। इब्राहिम पैगंबर नूं आख्या गया जे तेरा रब जे तेरा खुदा सच्चा है तो इन्हां कोलियां ते चल के दिखा। इब्राहिम पैगंबर ने अरदास कीती अरदोई कीती परमेश्वर दे चरणा विच कि ये जिहड़े तपते अंग्यार वंग भखते कोले ने ये ठंडे हो जाण फुल बन जाण। हे प्रभु हे परमेश्वर जी मैं इन्हां कोलियां ते चलना चाहुंदा हाँ। ऐसा ही होया, इब्राहिम की फरियाद बेनती परमेश्वर के चरणों में पुज गई। वो जड़े अंग्यार वांग भखदे कोले जमीन ते विछाए सन वो ठंडे फुल बन गए। इब्राहिम आराम दे नाल उन्हां कोलियां ते चल पिया। धन गुरु पंचम पातशाह जी ने यह नहीं कहा कि जिहड़ी तपदी तवी है ये ठंडी हो जाए तो मैं इस उपर बैठना है, ये जिहड़ी अग थले बलदी है ना बले जां इहदा बलदी रहे पर सेक ना मैनू लगे। धन गुरु पंचम पातशाह जी दे शरीर ते अनेक छाले हो गए, जल गया शरीर। सतगुरु पातशाह जी ने ये शब्द पढ़ते रहे, हर का नाम रेदे नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा संभाले तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये सतगुरु पातशाह जी ने भाणा मनण दा सानू ढंग ते भाणा मनण दी जाच दसी है। आओ एक शब्द एक रीत भाई साहब भाई गुरदास जी उचारण कर रहे ने, उस तो बाद नंद साहब का पाठ तो चौपी का पाठ भी अजे गायन करना है। आओ बड़े प्यार एक रीत बड़े प्यार शरण करते हैं।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है

अमृत वेला है, तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कार्य स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति हजूर फरमाउंदे कार्य स्नान सिमर प्रभु अपन

वीर लक्षण आस्था जी दीवार दर लगा के कीर्तन की समाप्ति उस उपरांत अरदास गुरु के हुक्म नामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो

0: शाह सुनील जी सेवक इथे आए हैं संगतां दा जिन प्यार नाल ज्ञानी बलदेव सिंह जी मेरे बरफरदार भी हैं ते ज्ञानी भी हैं महापुरुष भी हैं क्योंकि गुरु घर की सेवा जो करते हैं इन्होंने भी बड़ा प्यार किया है करना बनता भी है क्यों ए बाबा जी दे संगी फिर निकटवर्ती संगी हैं तो बड़ा प्यार किया है मैं अरदास करदा हाँ गुरु इन्हां नूं चढ़दियां कलां आप जी की सेवा विच इन्हां नूं पूरा माण गुरु बख्शे तो अज भी जो चाह का प्रोग्राम है ज्ञानी जी होरां ने काफ़ी सहयोग दिता है तो यह भी इन्हां दा प्यार है हुण अरदास होवेगी तो मैं बेनती करांगा भी गुरु साहब अपने सुख स्थान पर पहुँचा के तो कोई भी माई भाई जान की खेचल ना करे सारे ने सेवकों की यह सेवा प्रवान करनी आस करदा हाँ बेनती प्रवान करोगे आओ हम अरदास भी जुड़ो।
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.